बहुत अच्छे और अब देखते हैं कि प्रफुल्ल पटेल ने एक गाना सजेस्ट किया है नगमा लता की आवाज में मैं कोशिश करती हूं और रंजन विनोद फ्रॉम लंदन प्यार भरा स्वागत एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स हैप्पी गांधी जयंती और रसिला ने भी गांधी जयंती के ही बारे में कुछ भेजा है लिख कर और कहा है अक्टूबर द सेकेंड मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ टू फाउंडेशनल इंडियन लीडर्स एक महात्मा गांधी दूसरे लाल बहादुर शास्त्री सेलिब्रेटेड नेशन वाइड फॉर देयर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज हिस्ट्री कहते हैं कि भारत के इतिहास पर इनका बहुत ज़्यादा असर था birth and born on in 1869 Mahatma Gandhi he is honored as the father of the nation for leading India to independence bilkul unke principles kya the rasila kehti hain he championed ahimsa non violence ki samin tashaddud nahi karna tashaddud ke baghair azadi leni hai aur phir samin unhone ye kaha aur goron ne kya kiya goron ne tashaddud kiya सत्याग्रह इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ इस पर महात्मा गांधी जी बिलीव करते थे इंस्पायरिंग ग्लोबल मूवमेंट्स फॉर सिविल राइट्स ये बात सही है महात्मा गांधी जी की वजह से आलमी तंजीमें शुरू हुई द यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइजेस टुडे और लाल बहादुर शास्त्री बर्थ सेकेंड अक्टूबर 1904 ही सर्व्ड as the second prime minister during challenging national times including the 65 Indo-Pak war bahut shukriya aapka aur yahan par hain Amir Ali Rana shayad hain ji aur kya kaha hai nahi Pyar Ali Bhatia hain Pyar Ali Bhatia thank you ab chalte hain UK Kokila London mein hain Good morning and Juma Mubarak and Gandhi Jayanti ki Mubarak baad bhi. Amir Ali Rana ka aagya hai. Ab kehte hain good morning. Khabar chupi jati hai, afwah udai jati hai. Wah! Khabar chupai jati hai aur afwah udai jati hai. Rumor jo hota hai afwah, rumors udai jati hai. Ye wo zamana hai dost jahan kahani kuch hai. कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है क्या बात है कहते कहानी कुछ और ही होती है और सुनाई कुछ और ही जाती है आज के जमाने में तो वाकई फेक न्यूज़ का जमाना है जो फेक फेक इल्जाम देते हैं वो खुद फेक न्यूज़ देते हैं समझ झूठे बयानात आजकल दिए जाते हैं सच कोई नहीं बोलता